बलदेव जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो सब बछड़े और बालक सर्वात्मा श्री कृष्ण रूप में दिखाई दिए। बलराम जी, हु इज बलराम? Remember, last time we did the Namkaran, and he was given the name Sankarshan and Balaram. Balaram is the incarnation of Bhagwan Shiv. Balaram is Shesh Avatar. Balaram is Lakshman from Treta Yuga. Bhagwan Sri Ram would have said to Lakshman in Treta, "Oh Lakshman, this time I am your elder brother, but next time around you will be my elder brother." So Balaram was Lakshman in the time of Sri Ram. He has come as the elder brother of Bhagwan Krishna this time around. So Balaram, he was no ordinary human being. He is incarnation of God. And so freeing himself from the Maya, he looked intently upon all these forms of the boys and all the cows and the bachans and so on. He looked deeply into them. And what did he see? Gyan drishti, gyan drishti. देखा तो सब बछड़े और बालक सर्वात्मा श्री कृष्ण रूप में दिखाई दिए। He saw through his drishti that all of them, all the cows and the young ones and all the boys, they were in the form of Bhagwan Krishna. He saw Krishna in all of them. And then he was able to understand what was taking place. इस भेद को कहो कि यह क्या है। सो ही इज थिंकिंग, सब देवता ग्वाल बाल बने हैं और ऋषि मुनियों ने बछड़ों का रूप धारण किया है, यह मैं जानता हूं, परंतु यह बालक अब देवता नहीं है और यह बछड़े ऋषि भी नहीं है। अब तो मुझको सब में श्री कृष्ण दृष्टि आते हैं। जब यह ब्रह्म हुआ तो श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, इस भेद को कहो कि यह क्या है। बलराम डिसाइडेड, लुक, द ओनली वे आई गेट माय आंसर इज आई हैव टू गो टू भगवान कृष्ण। एंड सो ही अप्रोच भगवान कृष्ण। He said, "Prabhu, tell me, why is all this taking place? What is really happening? Why? Aap sampurna bhed bhin bhin samajhakar kaho jaise jisse mere man ka sandeh dur ho gaye. Jab is prakar Baldev ji ne Shri Krishna se kaha, tab Shri Krishna ne sab vritan samajhakar kaha ki, hey bhaiya, तुमको आज सुधि हुई है। जब ब्रह्मा को मोह हुआ और बछड़े और बालकों को चुरा कर ले गया, तब मैंने बालक और बछड़ों का वैसा ही रूप धारण कर लिया और उनके कुटुंबियों को क्लेश न होने दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने से बलदेव जी ने सब भेद जान लिया। सो भगवान रिस्पॉन्डेड टू बलदेव जी, बलराम जी क्वेश्चन, एंड ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन टू बलराम जी, हे भैया, दीज कौहोर बॉयज, दे आर नॉट द रूलर्स ऑफ गॉड्स एंड सो ऑन।

ले लो बिहारी नंदलाल, दहिया मोरे ले लो। ए कृष्णा, व्हाई यू स्टॉप कमिंग फॉर द माखन? कम कम टेक। इंस्टेड ऑफ भगवान कृष्णा हैविंग टू गो टू देम नाउ, दे विल ब्रिंग द माखन एंड गिव इट टू कृष्णा। कम कृष्णा, ले लो टेक माय माखन प्रभु, टेक माय माखन।

एक बार बोल श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर राम चंद्र की जय, आदि शक्ति जगदम्बा माता की जय, सर्व देवता सर्व देवी की जय, श्री सत्य सनातन।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: I am Ram Naresh Dwarika, inviting you to the program Addiction and Recovery, where we discuss issues relating to alcoholism and drug addiction. Be you an active user or in recovery? Tune in every Thursday at 9 a.m. This is an interactive program and you can call 663-1027 or 663-2335, where we can interact. Join me, Ram Naresh Dwarika, for the program Addiction and Recovery, every Thursday at 9 a.m.
2: जाने नहीं देंगे तुझे

डॉन बन गया, डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया। और क्या कहूं मैं, सारा जहां था उसके कदमों में।

स्वाभाविक है। कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और वो जैसे रोने लगता है सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और महान संदेश दे दिया।

But think about the answer. Think how, what you would do. Sri Shukdev Muni tells us, Hey Rajan, is Prakar Vrindavan, Vrindavan Bihari, Bhakt Hitkari Sri Krishna Bhagwan, Nitya Prati Vrindavan Me Bihar Kiya Karte Thay. Ek din, Bina Balaram Ko Sang Liye, Akele Hi, Gwal Bal Ko Saat Le, यमुना के तीर धेनु चराने गए मार्ग में ग्रीष्म की धूप से अत्यंत व्याकुल होकर गाय और ग्वाल बाल बहुत त्रिषित हुए तब सबने प्यास के कारण काली डह में जाकर विष से दूषित यमुना जी का जल पिया हे राजन उस जहरीले जलेक पीने से वे ऐसे अचेत हुए कि तब मन की कुछ शुद्धि बुद्धि न रही मृतक के समान निष्प्राण से हो मुरझाकर यमुना के किनारे पर गिर गए श्री सुखदेव मुनि सिंह That on one occasion, Bhagwan Krishna in Vrindavan, he went with some of his cowherd boys to the banks of the river Yamuna. But Balaram did not accompany him on this trip. Balaram remained home. The place was extremely hot. And so, they all felt thirsty, all the cowherd boys with Bhagwan Krishna, they felt thirsty. Tormented with this thirst, even the cows and the bacha, the young ones, they went in the river and they drank water. But unfortunately, Hey Rajan, us jahirile jal ke peene se ve ऐसे अचेत हुए कि तन मन की कुछ सुधी बुद्धि न रही मृतक के समान निष्प्राण से हो मुरझाकर यमुना के किनारे पर गिर गए Unknowingly to them, drinking that water was not good. And all of them fell in a swoon. They fainted on the banks of that Yamuna. योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र ग्वाल बाल और गायों के मूर्छित देख अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से देखकर सबको जिला दिया When भगवान कृष्ण saw what had happened to all his friends, by his power, भगवान brought them back, all back to life. Because in that part of the Yamuna, the water was poisonous. जब सब गायें और ग्वाल बाल जी उठे और श्री कृष्ण को अपने सन्मुख खड़े देखा और बड़े आश्रय से परस्पर पर को देखने लगे अब हमने श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि का प्रभाव देख लिया जिनके विष पीकर प्राण निकल गए थे और फिर जी उठे हम सब इसी अपने परम प्यारे कृष्ण की कृपा दृष्टि से मानते हैं Realizing what had happened, having regained their consciousness, all of them jumped up And they started to stare at one another. What had happened? What had happened to us? They all stood amazed. And looking at Bhagwan Krishna, they came to realize that all that happened, their revival, they being brought back to life, only happened because Bhagwan Krishna, their protector,

जब फिरते फिरते कालिया के पराक्रम घट गया, तब कालिया के ऊपर को उठे हुए फन्नों को नीचे नवाकर श्री कृष्ण ने झट झपट कर उसका फन पकड़ कर चरण ले दाव उसकी नाक में नाथ डाल दी और उसके शीश पर जो चढ़े और नाचने लगे. सो भगवान इज मेकिंग हिमसेल्फ वेरी वेरी हैवी. कालिया कैन नॉट स्क्वीज हिम. भगवान वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉइल ऑफ कालिया. ही जम्प्ड अपॉन द हेयर ऑफ कालिया एंड ही स्टार्टेड टू डांस. Bhagwan is dancing on the head of Kalia. It is said Kalia has many heads, many hoods, and Bhagwan Krishna is dancing on him. Nachne lage. Jis samay nat nagar natwar vesh dhar kar Kalia ke phanno par nachne ko khade hue, usko dekhne ke liye Gandharv Siddhi सूरगन चारण देवांगना यह सब अत्यंत प्रसन्न होकर. सो द हेवनली बीइंग्स दे सॉ हाउ भगवान कृष्ण इज डांसिंग ऑन कालिया. दे केम आउट द गंधर्वज द हेवनली बीइंग्स दे केम आउट विद देयर मृदंग्स एंड सॉ ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे स्टार्टेड टू बीट एंड डांस एज भगवान कृष्ण इज डांसिंग ऑन द हेड ऑफ कालिया. हे राजन, जिस कालिया के 101 मस्तक थे, उसने जो मस्तक ऊपर को उठाया, उसको दृषद मन श्री कृष्ण चंद्र ने उसी समय पांव की ठोकर से नीचे को दबा दिया. और जब वह क्षीण अवस्था वाला इधर उधर गिरने लगा, तब मुख से नासिका से रुधिर की धारा निकली लगी. शरीर के बंद टीले हो गए. इस प्रकार दृष्ट कालिया के दुष्ट दमन भगवान ने मर्दन किया. भगवान कंटिन्यूज टू डांस ऑन द हेड ऑफ कालिया ऑन हिज मेनी हुड्स एंड सो प्रेसिंग डाउन ऑन हिम. And so, after a time, Bhagwan Krishna was able to subdue Kalia, brought him under control. Kalia started to spit blood. He's becoming weak. He could not overcome Bhagwan Krishna in any way. He Rajan, Natanagar Bhagwan ne jo chin vichitra तांडव नृत्य किया, उससे कालिया के फन रूपी क्षत्र टूट गए और सब शरीर की नस नस ढीली हो गई. मुख से रुधिर बहने लगा. तब श्री कृष्ण के स्थावर जंगम का गुरु पुराण पुरुष नारायण समझकर मन से उनकी शरण ली. Bhagwan Krishna, having crushed the heads of Kalia, making him spit blood and so on, the serpent now thought. His mind went on Lord Narayan, Sri Mahavishnu. And in his mind, he's thinking about Bhagwan, the Supreme Lord. And he's praying to that Lord, Sri Narayan, for protection. Come to my rescue, Prabhu. I am in trouble. In his mind, he is praying.